0: श्री दीप नारायण भगवान की जय।
1: श्री श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय। श्री श्री अलकपुरी जी महादेव की जय। देवाधिदेव श्री देवेश्वर महादेव की जय। आराधि भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। सत सनातन धर्म की जय।

0: बोले श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।
2: Now we will have next bhajan Akiya Sataguru Charanomelage.

0: ओम सदीपन भगवान की जय। श्री श्रीदेव श्रीमती वकी
1: जय।
0: श्री श्यालक पोचि मायोक्सित की जय। श्री स्वामदवनंज भगवान की जय। विश्व कोचि मामदलेश्वर पमन सुगिरत श्री स्वामेश्वनंज गुदीव की जय।

0: नारायण भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: देवपुरी श्या महादेव
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: जय।
0: ओम शांति शांति।
1: जय।

0: तस्मै शिखराय नमः शिवाय। ॐ मनरिति भस्म जलमिति भस्म है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। आगे शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धरनाशकाय कंठ में भी कर दो गले में हिया शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय मेष धरनाशकाय हरि ओम पिनाकहस्ताय सूर्याय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय ओम यक्षस्वरूपाय जटाधरकाय पिनाकहस्ताय सनातनाय ओम दिवाय देवाय दिगंबराय तस्मै हकाराय नमः शिवाय। ओम जलमिति भस्म अग्निरिति भस्म हरि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वा वस्तम गतो विवा अदसाय यस्मृत पुनरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यंतरः शुचिः यस्मृत पुनरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यंतरः शुचिः। ज्यादा हो गए put some way yeah, this that's all right
1: हाँ अच्छा
0: तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय विद्महे तन्नो रुद्र

प्रचोदयात्। हरिः ॐ भस्माङ्गराय नीलकण्ठाय महेश्वराय सदाशिवाय सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय गुड् गुड् पिनाकहस्ताय जटाधराय गुड् ॐ मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुविजिताय ये प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चायै माम हेतु च कश्चनः। हरिः ॐ गङ्गे चयमिने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी सुनार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ जलस्नानं करिष्यामि श्रीगं गणाधिपतये नमः। हरि ओम लिंगास्थानम करिष्यामि ओम श्रीनारायण गंगे जैमिने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नार्थम प्रतिक्रियताम। हरि ओम तीन बार अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चायै माम हेतु च कसना इति जलस्नानम करिष्यामि इति जलस्नानम करिष्यामि। ओम।

ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोष कारकम पावन यज्ञ हेतु च पयस्नार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम इति पंचामृतं मयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् शर्करया स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् हरिः ओम ओम गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् हरिः ओम कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पावन यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां ओम सदाशिवाय नमः साम सदाशिवाय नमः एवरी टाइम कीप चैंटिंग ओम नमः शिवाय व्हाइल यू डूइंग वॉशिंग हरि ओम सदाशिवाय नमो नमः साम सदाशिवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम तरु पुष्परेतु समुद्भूतं सुस्वादं मधुरं मधु तेजपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां इदं मधुस्नानं करिष्यामि शिवलिंगाय नमो नमः हरिः ओम ओम पयस्वस्तु समुद्भूतं मधुराम्लशशिप्रभं दद्यानीतमयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां ओदो सदाशिवाय नमः ओम सदाशिवाय नमः साम सदाशिवाय नमः हरि ओम पंचामृतं मयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचामृतं मयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां हरिः ओम पंचामृतं मयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां ओम हर हर महादेव नाउ वाटर ओम गंगे चयने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां काशी भागीरथी सर्वतीर्थाति जलं सन्निध्यौ कुरु ओम श्री नारायण नमः श्री पशुपते नमः श्री गंगा

जटाधराय नमः जटाधराय नमः ओम अष्टांगलिंगाय नमः ओम सदाशिवाय नमो नमः ओम लिंगाष्टकाय नमो नमः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती पानी और हुए अब तिलक तिलक करना है भस्म का अच्छे से तिलक करके हरिः ओम चंदनंतु महत्पुण्यं पवित्रं भावनासनं आपदं हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा ओम सदा शिवाय नमः साम

0: पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटाहराय देवाय धियाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय देवाय दिव्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
1: तो चावल और चावल भी लगाइए, सब लौंग इलायची वस्त्र जनेऊ। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नानः रत्नानि सुगंधिनी फलानि च मया दत्तानि लेपार्थं पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुगीफलं मया दत्तं नागवल्लीर्दलयुक्तं एलाचूर्णादिसंयुक्तं नागवल्लीर्चूर्णसंयुक्तं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसु अनंत पुण्यं फलं ददत् शान्तिं प्रयक्ष्यमे दक्षिणां समर्पयामि साम मसला शिवाय नमो नमः। वस्त्रम् ओम लोकलज्जा निवारणे मया पिपादिते नलक्ये वस्त्रं समर्पयामि श्रीनारायण साम सदा शिवाय नमः। बस अब धतुर की जगह में इसी को हम करें, इसको धतुर को स्मरण करके। हरि ओम धतुर सहित पुष्पादि समर्पयामि कान्नात कान्नात प्ररोहन्ति एवान दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन ये दुर्वाम समर्पयामि। बस त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम त्रिजनम 11 टाइम्स चढ़ाइए। त्रिजन्मम त्रिगुणाकारम क्षत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम क्षत्रियायुधम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम क्षत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। एवरीवन कैन पुट दिस वेरी गुड टुडे इफ समबडी हरि ही ओम क्या हो गए 11 टाइम्स। अच्छा ओम माल्यादिनी सुगंधिनी तिलक लगाइए सारे भगवान को पचाए। Can you pass that thali to Swamiji?
0: Gajananam bhutaganadi sevitam kapitta jambu phalacharu bhakshanam umasutam soka vinasakarakam namami vigneshwara padapangajam siddhi buddhi saitaya sri gamganadhipataye namaha श्रीखन्नम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम बीलपेनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम श्रीगम गणाधिपतये नमो नमः।
1: सिंदूर भी लगा दीजिए।
0: सिंदूरम शोभनम चैव कामनम प्रतिगृहताम सिंदूरम शोभनम चैव सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम अक्षताश्च कुंकुमाक्ता शुभ्रा घुनाश्च निर्मला मया पपादिते देवतुभ्यं वासदि प्रतिगृहताम।
1: थोड़ा सा लाल व्हाइट में लाल बहुत अच्छा एक एक बिंद लगे थी बहुत।
0: हरियम सांब सदा शिवाय नमः। ओम चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा हरि ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः।
1: समवन कैन प्ले द बेल।
0: ओम सांब सदा शिवाय नमः
1: ना अगरबत्ती

0: जय अगरबत्ती वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यम गंधोक्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम। इसको one leaf here and water. वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यम गंधोक्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम। some water. हरी ओम कर्पूर गौरम कर
1: वाटर
0: ओम ज्योतिर ज्योतिर अग्निर ज्योति स्वाहा ओम ज्योतिर सूर्य वर्चर सूर्य स्वाहा ओम अग्निर ज्योतिर वर्चर ज्योति स्वाहा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्घिमन गुरुवेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिः ओम ओम श्री परमेश्वराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री सदा शिवाय नमः।
1: Hey, go back out. Thank you.

0: Sidewalk done.
1: ओम प्राच्यै नमः सिंदूर भी डालिए। ओम पश्चिमाय नमः। ओम उत्तराय नमः। उत्तर दिशाय नमः। ओम दक्षिणाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम आग्नेय नमः। ओम वायव्ये नमः। ओम नैऋत्ये नमः। शानाय नमः। ओम भूतलाय नमः। नीचे ओम आकाशाय नमः। आकाश में बस अब फूल रख देंगे सारे दिशा में। नाउ फ्लावर वी नीड टू हैव फ्लावर।
0: ब्रिंग मी 9 कलर्स फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन।
1: Yeah, that is already. Hari Om, Om Suryaya Namaha, Om Sum Seta White, Om Chandraya Namaha, Om Bhaumaya Lal, Red, Om Bhaumaya Namaha. भौमाय नमः। नाउ ग्रीन बुम बुदाय नमः। ओम बुम बुदाय नमः। येलो ओ ब्रिम बृहस्पतये नमः। नाउ व्हाइट डायमंड कलर। ओम राम रीम रौ शुक्राय नमः। नाउ ब्लैक सनी कलर।
0: देयर वाज अ डार्क नो डार्क फ्लावर देयर या दिस वन या।
1: हां
0: थैंक यू।
1: ओम सम शनिश्चराय नमः। सम शनिश्चराय नमः। नाउ ब्लू। ओ ये या या। ओम राम राहवे नमः। ब्राउन
0: ब्राउन यस
1: ओम मे विद द वन लाइक पिंक स्टाइल। या यू गॉट इट ओके। या
0: वेयर इज द वोकाय वेयर इज द
1: भस्मा
0: भस्मा
1: देयर इज अ स्मॉल कटोरी वेयर इज दैट भस्मा
0: ये ले लो बाहर निकाल दो।
1: बस ओम किम के दबे नमः। बस बस अब अग्नि को प्रज्वलित करके एक लकड़ी में रख के छोड़ देंगे उसमें। ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षुर सूर्य अजायत श्रोता आद्वायु ब्राणस मघ्रारदग्नि अजायत। ओम अग्ने सानिल्य गोत्र ओम अग्ने सानिल्य गोत्र मेष ध्वज प्रामुखे मम सम्मुखो भवः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षुर सूर्य अजायत श्रोता आद्वायु ब्राणस मघ्रारदग्नि अजायत। बोलिए अग्नि देवता की जय। नाउ वी कैन सेट थ्री लकड़ी विथ घी थ्री स्टिक्स थ्री ओनली फर्स्ट थ्री
0: ऑल दिस थ्री वंस
1: नो नो डिफरेंट सेपरेट या ओके। ओ

0: ओम धन्वंतरवे स्वाहा। बस नाउ वेयर इज दैट लॉन्ग स्टिक फॉर द घी? वो हाँ ये घी के लिए। श्योर। ओम प्रजापते स्वाहा। Put in your chest and when he says swaha. Okay. जिसको जिसको भस्म लगाना बचा है उनको भी लगा दीजिए। ओ जो पीछे आए
1: रतन देवी सूरज देवी those who just came now put them till the gods from this here and where is this थाली

गणनान् त्वा गणपतिगो हवामय प्रेणान् त्वा प्रेवतिगो हवामय वसुगो आहमदानि गौरवदमा त्वमसि गर्भधम स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। हरि ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यं नमः स्वाहा। शची पुरंदराभ्यं नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यं

0: ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, सर्वार्थ देवा सर्वतीर्थादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सोधा नमस्तुते स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा, ओम ब्रह्मपुत्रिये विद्महे सरस्वतीये धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदया स्वाहा, ओम महालक्ष्मीये विद्महे विष्णुपत्नीये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाहा, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदया स्वाहा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंडकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा, दिवाकराय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदया स्वाहा, ओम दश दिक्पालाय नमः स्वाहा, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम् नमः, नम प्रकृते भद्राय देवता देवाय स्मता प्रतिष्ठाम स्वाहा, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कस्सन सशत्त शोक सुभद्रिकां काम्बिलवासिनीं स्वाहा, एहे ब्रह्मन्द महादेवाय नमः स्वाहा, हरि ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा, पशुपत्ये नमः स्वाहा, अघोराय नमः स्वाहा, सांब सदाशिवाय नमः स्वाहा, चारवेदाय नमः स्वाहा, ऋग्वेदाय नमः स्वाहा, सामवेदाय नमः स्वाहा, यजुर्वेदाय नमः स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः स्वाहा, अठारपुराणाय नमः स्वाहा, सकल उपनिषदाय नमः स्वाहा, बद्रीनाथाय नमः स्वाहा, केदारनाथाय नमः स्वाहा, ठाकुरपुरे नमः स्वाहा, सोमनाथाय नमः स्वाहा, अमरनाथाय नमः स्वाहा, नाउ वी गोइंग थाउजेंड्स
1: थाउजेंड नेम्स ऑफ द शिव,
0: ओम स्थिराय नमः स्वाहा, ओम स्थाणवे नमः स्वाहा, ओम प्रभवे नमः स्वाहा, ओम भीमाय नमः स्वाहा, ओम वरदाय नमः स्वाहा, ओम प्रभवाय नमः।

श्रुतीर्थाय नमः स्वाहा, ओम कृष्णाय नमः स्वाहा, श्रृंगाल रूपाय नमः स्वाहा, ओम सिद्धार्थाय नमः, ओम मुंडाय नमः, ओम सर्वशुभंकराय नमः स्वाहा, ओम अजाय नमः स्वाहा, ओम बहुरूपाय नमः स्वाहा, ओम गंधधारिण्ये नमः स्वाहा, ओम कर्पूरदिने नमः स्वाहा, ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा, ऊर्ध्वलिंगाय नमः स्वाहा, ऊर्ध्वसाये नमः स्वाहा, नवस्थलाय नमः स्वाहा, त्रिजटिने नमः स्वाहा, चिरवाससे नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम सेनापतये नमः, ओम विभवे नमः, ओम अहस्वराय नमः, ओम नक्तस्वराय नमः स्वाहा, ओम तिन्मगये नमः स्वाहा, ओम सूचवर्षाय नमः स्वाहा, शुभचर्षाय नमः स्वाहा, ओ गजग्ने नमः स्वाहा, ओम पाणिने नमः स्वाहा, ओम दैत्यग्ने नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, ओम लोकदात्रे नमः स्वाहा, ओम गुणकाराय नमः स्वाहा, सिंहादूलरूपाय नमः स्वाहा, आर्धचम्बावरावृत्ताय नमः स्वाहा, कालयोगिने नमः स्वाहा, महानादाय नमः स्वाहा, ओम सर्वकामाय नमः स्वाहा, ओम चतुष्पदाय नमः स्वाहा, ओम निशाचराय नमः स्वाहा, ओम प्रेतचारिणे नमः स्वाहा, ओम भूतचारिणे नमः स्वाहा, ओम महेश्वराय नमः स्वाहा, ओम बहुभूताय नमः स्वाहा, ओम बहुधराय नमः स्वाहा, ओ सोनार्वे नमः स्वाहा, ओम अमिताय नमः स्वाहा, ओम गतये नमः स्वाहा, ओम नित्य प्रियाय नमः स्वाहा, नित्य नर्तनाय नमः स्वाहा, नर्तकाय नमः स्वाहा, सर्वलालसाय नमः स्वाहा, ओम घोराय नमः स्वाहा, ओम महातपसे नमः स्वाहा, ओम पाशाय नमः स्वाहा, ओम नित्याय नमः स्वाहा, ओम गिरिरुहाय नमः स्वाहा, ओम नवसे नमः स्वाहा, ओम सहस्त्रताय नमः स्वाहा, ओम विजयाय नमः स्वाहा, ओम व्यवसाय नमः स्वाहा, अंतरिद्याय नमः स्वाहा, ओ अतिंद्राय नमः स्वाहा, अघर्णनाय नमः स्वाहा, ओम घर्षणात्मने नमः स्वाहा, यगने नमः स्वाहा, कामनाशकाय नमः स्वाहा, दक्षगपाहाय नमः स्वाहा, ओम सुसहाय नमः स्वाहा, मध्यमाय नमः स्वाहा, तेजपहारिणे नमः स्वाहा, बलग्ने नमः स्वाहा, मुदिताय नमः स्वाहा, अर्थानाय नमः स्वाहा, अजिताय नमः स्वाहा, अवराय नमः स्वाहा, गंभीरघोषय नमः स्वाहा, गंभीराय नमः स्वाहा, गंभीरबलहानाय नमः स्वाहा, न्यग्नोरूपधराय नमः स्वाहा, न्यग्रुधाराय नमः स्वाहा, ओम वृक्षकर्णस्थिराय नमः स्वाहा, ओम विभवे नमः स्वाहा, श्रुतिक्षणदर्शनाय नमः स्वाहा, महाकायाय नमः स्वाहा, महाननयाय नमः स्वाहा, विश्वक्षणाय नमः स्वाहा, ओम हरये नमः स्वाहा, यज्ञाय नमः स्वाहा, संयुगापीडवाहनाय नमः स्वाहा, तीक्ष्णातापाय नमः स्वाहा, ओम हयर्षाय नमः स्वाहा, सहायाय नमः स्वाहा, कर्मकालविदाय नमः स्वाहा, विष्णुप्रसादिताय नमः स्वाहा, यज्ञाय नमः स्वाहा, ओम समुद्राय नमः, ओम बड़मुखाय नमः स्वाहा, उतासनसहासाय नमः स्वाहा, उतासनसहायाय नमः स्वाहा, ओ प्रशान्तन्वे नमः स्वाहा, उतासनाय नमः स्वाहा, उग्रतेजसे नमः स्वाहा, महातेजसे नमः स्वाहा, जन्यायः नमः स्वाहा, बीजकालविदे नमः स्वाहा, ओम ज्योतिषायनाय नमः स्वाहा, ओम सिद्धये नमः स्वाहा, सर्वविग्रहाय नमः स्वाहा, ओम सिखिने नमः स्वाहा, ओम मुनिने नमः स्वाहा, जटिने नमः स्वाहा, जलिने नमः स्वाहा, ओम मूर्तिजाय नमः स्वाहा, मूर्धजाय नमः स्वाहा, ओम बलिने नमः स्वाहा, बैनविने नमः स्वाहा, ओम पणविने नमः स्वाहा, ओम तालिने नमः स्वाहा, ओम खलिने नमः, ओम कलंककटाय नमः स्वाहा, ओम नक्षत्र विग्रह हस्ताय नमः स्वाहा, गुणबुद्धये नमः स्वाहा, ललाय नमः
स्वाहा ओम अगमाय नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम विश्ववाहवे नमः स्वाहा ओम विभागाय नमः स्वाहा ओम सर्वगाय नमः स्वाहा अमुखाय नमः स्वाहा ओम विमोचनाय नमः।

0: स्वाहा सुरासुराय नमः स्वाहा हिरण्यकवचदाय नमः स्वाहा मेदजदाय नमः स्वाहा बलचारिण्ये नमः स्वाहा महिचारिण्ये नमः स्वाहा ओम श्रुताय नमः स्वाहा ओम सूर्य तुर्य विदोनिताय नमः स्वाहा सर्वतुद्ध परिग्रहाय नमः स्वाहा सर्वतुर्य विनोदिने नमः स्वाहा व्यालरूपाय नमः स्वाहा गुहावासिने नमः स्वाहा गुहाय नमः स्वाहा मालिने नमः स्वाहा तरंगविदे नमः स्वाहा त्रिदशाय नमः स्वाहा त्रिकालरहिते नमः स्वाहा कर्म संबंध विवेचनाय नमः स्वाहा असुरेन्द्रानंदवदाय नमः स्वाहा ओम युधि शत्रुविनाशाय नमः स्वाहा सांग प्रसादाय नमः स्वाहा दुर्वासने नमः स्वाहा सर्वार्धिनिशीषाय नमः स्वाहा प्रस्कंदाय नमः स्वाहा यज्ञ विभागदे नमः स्वाहा अतुल्याय नमः स्वाहा यज्ञ विभागदाय नमः स्वाहा सर्वसवाय नमः स्वाहा सर्वचारिणी नमः स्वाहा दुर्वासे नमः स्वाहा ओम वासाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा ओम हेमाय नमः स्वाहा ओम हेमकाराय नमः स्वाहा निष्कमाय नमः स्वाहा ओम सर्वधारिणी नमः स्वाहा धरोदत्ताय नमः स्वाहा लोहिताक्षाय नमः स्वाहा ओमाक्षाय नमः स्वाहा विजयाक्षाय नमः स्वाहा विशारदाय नमः स्वाहा सहस्राय नमः स्वाहा ओम निग्राय नमः स्वाहा ओम कर्त्रे नमः ओम सर्वपरिचरणिसाय नमः स्वाहा सर्परिचिरनिवासानाय नमः स्वाहा मुख्याय नमः स्वाहा अमुख्याय नमः स्वाहा ओम देहाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा सर्वकामदाय नमः स्वाहा सर्वकाल प्रसादाय नमः स्वाहा ओम सुबलासाय नमः स्वाहा ओम बलरूपधीते नमः स्वाहा सर्वकामवराय नमः स्वाहा ओम सर्वकाय नमः स्वाहा सर्वतोमुखाय नमः स्वाहा आकाशनिवेशाय नमः स्वाहा निपातिने नमः स्वाहा अवसाय नमः स्वाहा ओम खगाय नमः स्वाहा ओम रौद्ररूपाय नमः स्वाहा अंशवे नमः स्वाहा आदित्याय नमः स्वाहा बहुरश्मे नमः स्वाहा ओम सुवर्षिने नमः स्वाहा ओम वसुवेगाय नमः स्वाहा महावेगाय नमः स्वाहा मनोवेगाय नमः स्वाहा निशाचराय नमः स्वाहा सर्ववासिने नमः स्वाहा श्रेयवासिने नमः स्वाहा उपदेशकराय नमः स्वाहा ओम अकराय नमः स्वाहा ओम मुनये नमः स्वाहा आत्मनिरलोकनाय नमः स्वाहा ओम संभवाय नमः स्वाहा संमग्नाय नमः स्वाहा सहस्रदाय नमः स्वाहा ओम पक्षिणे नमः स्वाहा ओम पक्षरूपाय नमः स्वाहा अधिशिप्ताय नमः स्वाहा विषामतमये नमः स्वाहा ओम उन्मादाय नमः स्वाहा ओम मदनाय नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा ओम असस्ताय नमः स्वाहा ओम अर्थकाराय नमः स्वाहा ओम असये नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामाय नमः स्वाहा ओम प्राचे नमः ओम स्वाहा ओम दक्षिणाय नमः ओम स्वाहा ओम वामनाय नमः स्वाहा ओम सिद्धयोगिने नमः स्वाहा ओम महर्षये नमः स्वाहा ओम सिद्धार्थाय नमः स्वाहा ओम सिद्धसाधकाय नमः स्वाहा भिक्षवे नमः स्वाहा भिक्षुरूपाय नमः स्वाहा विपणाय नमः स्वाहा मृदवे नमः स्वाहा अभयनाय नमः स्वाहा विशाखाय नमः स्वाहा षष्ठीभागाय नमः स्वाहा ओम गवापतये नमः स्वाहा वज्रहस्ताय नमः स्वाहा ओम पिनाकाय नमः स्वाहा सदाशिवाय नमः स्वाहा नाउ इन
1: 360
0: हो गया जस्ट वी फिनिश
1: yeah
0: 700 so this is a good meditation keep continuing meditation in Kali Yuga om viskambine namaha swaha chamustamanaaya namaha swaha vrittavitakaraaya namaha swaha taalaaya namaha swaha madave namaha swaha madukulochanaaya namaha swaha vachaspataaya namaha swaha vajasenaaya namaha swaha nityamaasira pujitaaya namaha swaha brahmachariine namaha swaha lokachariine namaha स्वाहा सर्वचारिणे नमः स्वाहा विचारविदे नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा निशाचरिणे नमः स्वाहा पिनाकवृत्ते नमः स्वाहा ओम निमित्तस्थान नमः स्वाहा ओम निमित्ताय नमः स्वाहा ओम नंदये नमः स्वाहा ओम नंदीकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा ओम नंदिने नमः स्वाहा ओम नंदनाय नमः स्वाहा नंदीगवर्धनाय नमः स्वाहा ओम भागहरिणे नमः स्वाहा नियश्रे नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा पितामहाय नमः स्वाहा चतुर्मुखाय नमः स्वाहा ओम महालिंगाय नमः स्वाहा ओम चारुलिंगाय नमः स्वाहा ओम लिंगाध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम सुराध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम योगाध्यक्षाय नमः स्वाहा युगवाहाय नमः स्वाहा बीजाध्यक्षाय नमः स्वाहा बीजकर्ते नमः स्वाहा अध्यात्मनागतनाय नमः स्वाहा बलाय नमः स्वाहा इतिहासाय नमः स्वाहा सकल्पाय नमः स्वाहा गौतमाय नमः स्वाहा निशकराय नमः स्वाहा दम्भाय नमः स्वाहा ओम अमदाय नमः स्वाहा ओम वेदम्भ्याय नमः स्वाहा ओम वैश्याय नमः स्वाहा वसकराय नमः स्वाहा कलाय नमः स्वाहा ओम लोकर्ते नमः स्वाहा ओम पशुपतये नमः स्वाहा ओम महाकर्ते नमः स्वाहा ओम अनौषधाय नमः स्वाहा ओम अक्षराय नमः स्वाहा ओम परमाय नमः स्वाहा ओम परमाय ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम बलवते नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम नित्यै नमः ओम अनित्यै नमः ओम शुद्धात्मने नमः स्वाहा ओम शुद्धाय नमः स्वाहा ओम मान्याय नमः स्वाहा ओम गतागताय नमः स्वाहा ओम बहुप्रसदाय नमः स्वाहा ओम सुप्रश्नाय नमः स्वाहा ओम दर्पणाय नमः स्वाहा ओम अमित्रजिते नमः स्वाहा ओम वेदकाराय नमः स्वाहा ओम मंचकाराय नमः स्वाहा ओम विदिशे नमः स्वाहा ओम समरदर्दनाय नमः स्वाहा ओम महाभिनिशाय नमः स्वाहा ओम महाघोराय नमः स्वाहा ओम वसिने नमः स्वाहा ओमकराय नमः स्वाहा अमनिज्वलाय नमः स्वाहा महाज्वलाय नमः स्वाहा ओम आदि विदुम्नाय नमः स्वाहा ओम हुताय नमः स्वाहा ओम विषे नमः स्वाहा विषाय नमः स्वाहा शंकराय नमः ओम नित्यवर्षिणे स्व नमः ओम धूम्रकेताय नमः स्वाहा ओम नीलपराय नमः स्वाहा ओम आंगुलद्याय नमः स्वाहा ओम शोभनाय नमः स्वाहा ओम निवर्गाय नमः स्वाहा स्वस्तिदाताय नमः जी तो है नमः ओम स्वति भावाय नमः ओम भागिने नमः ओम भागकराय नमः स्वाहा ओम लघवे नमः स्वाहा उत्सन्नाय नमः स्वाहा महंकराय नमः स्वाहा महागरपराय नमः स्वाहा कृष्णवचाय नमः स्वाहा सुवर्णाय नमः स्वाहा ओम सर्वदेहिनाम इंद्रियाय नमः स्वाहा ओम महापादकाय नमः स्वाहा महाहस्ताय नमः स्वाहा महाकायाय नमः स्वाहा महायशसे नमः स्वाहा महाग्रभूमि नमः स्वाहा महामात्राय नमः स्वाहा महानेत्र्याय नमः स्वाहा निशालाय नमः स्वाहा महाकांताय नमः स्वाहा महाकर्णाय नमः स्वाहा महेष्टाय नमः स्वाहा हणवे नमः स्वाहा महाहणवे नमः स्वाहा मानसाय नमः स्वाहा महागम्भवे नमः स्वाहा महाग्रीसाय नमः स्मरसानभाजे नमः महाभक्षे नमः ओम महेश्वराय नमः स्वाहा मरुरसकाय नमः स्वाहा अंतरात्मने नमः स्वाहा मृगालाय नमः स्वाहा ओम लंबानाय नमः स्वाहा ओम लंबिस्थोसाय नमः स्वाहा महामायाय नमः स्वाहा ओम स्वाहा मयोपदानिये नमः स्वाहा पयोनिधये नमः स्वाहा महादंताय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा महाजीवाय नमः स्वाहा ओम महामुखाय नमः स्वाहा महानखाय नमः स्वाहा महासुराय नमः स्वाहा महाकोशाय नमः स्वाहा महाजटाय नमः स्वाहा प्रसन्नाय नमः स्वाहा ओम प्रसादाय नमः स्वाहा प्रपत्याय नमः स्वाहा गिरिसादनाय नमः स्वाहा स्निनाय नमः स्वाहा ओम अहस्रयाय नमः स्वाहा ओम अजिताय नमः स्वाहा महामुनये नमः स्वाहा वृक्षकाराय नमः स्वाहा वृक्षकेतवे नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाहा बाहुबायनाय नमः स्वाहा गंडलिने नमः स्वाहा मेरुदाग्ने नमः स्वाहा मेरुधाम्ने नमः स्वाहा देवादी नमः स्वाहा देवाधिपतये नमः स्वाहा अथर्ववर्षीयाय नमः स्वाहा सामवैशीयाय नमः स्वाहा साक्षसामिश्राय नमः स्वाहा ऋक्सहस्रामितिक्षणाय नमः स्वाहा ओम यजुपादभुजाय नमः स्वाहा ओम गुह्याय नमः स्वाहा प्रकाशाय नमः स्वाहा जंगमाय नमः स्वाहा अमोघराय नमः स्वाहा प्रसदाय नमः स्वाहा अभिज्ञाय नमः स्वाहा ओम सुदर्शनाय नमः स्वाहा उमकराय नमः स्वाहा ओम प्रियाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा कनकाय नमः स्वाहा कंचन छवये नमः स्वाहा ओम नाभये नमः स्वाहा नंदीकाराय नमः स्वाहा ओम भावाय नमः स्वाहा पुष्कर स्थापते नमः स्वाहा ओम स्थिराय नमः स्वाहा द्वादशाय नमः स्वाहा ओम त्रासनाय नमः स्वाहा ओम आद्याय नमः स्वाहा ओम यज्ञाय नमः स्वाहा यज्ञ सहिताय नमः स्वाहा नक्तम नमः ओम कलये नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, ओम मकराय नमः स्वाहा, ओम कालभुजिताय नमः स्वाहा, ओम सगणाय नमः स्वाहा, ओम गुणकराय नमः स्वाहा, ओम भूत वाहन सारथे नमः स्वाहा, ओम भस्माय नमः स्वाहा, भस्मधाराय नमः स्वाहा, भस्मगोत्ने नमः स्वाहा, भस्मसयाय नमः स्वाहा, भस्मगोत्ने नमः स्वाहा, भस्मभूताय नमः स्वाहा, ओम तरवे नमः स्वाहा, ओम गणाय नमः स्वाहा, लोकपालाय नमः स्वाहा, अलोकाय नमः स्वाहा, ओमात्मने नमः स्वाहा, ओम सर्वभूजिताय नमः स्वाहा, ओम शुक्लाय नमः स्वाहा, त्रिशुकाय नमः स्वाहा, संपन्नाय नमः स्वाहा, अशुचाय नमः स्वाहा, भूत निविशिताय नमः स्वाहा, ओम आश्रमासाय नमः स्वाहा, क्रियावस्थाय नमः स्वाहा, विश्वकर्मपतये नमः ओम ओम वराय नमः स्वाहा, ओम विशाल शाखाय नमः स्वाहा, ओम प्रतिष्ठाय नमः स्वाहा. इट्स हाफ हाफ ऑफ द वे नाउ.
1: ओके, आई थिंक वी विल नीड राइस मोर.
0: हरि ओम. ओम अम्बुजालाय नमः स्वाहा, सुनिश्चलाय नमः स्वाहा, कपिलाय नमः स्वाहा, कपिशाय नमः स्वाहा, शुक्लाय नमः स्वाहा, आयुषे नमः स्वाहा, ओम अपराय नमः स्वाहा, ओम पराय नमः स्वाहा, ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा, ओम आदित्ये नमः स्वाहा, तक्षर्ताय नमः स्वाहा, सुविज्ञेयाय नमः स्वाहा, सुशारदाय नमः स्वाहा, परशोधायुधाय नमः स्वाहा, ओम देवाय नमः स्वाहा, ओम सुशारदाय नमः स्वाहा, परशोधायुधाय नमः स्वाहा, ओम देवाय नमः स्वाहा, ओम अनुकारणे नमः स्वाहा, सुबान्धवाय नमः स्वाहा, तुम्बणिदाय नमः स्वाहा, महाक्रोधाय नमः स्वाहा, ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा, जलेशयाय नमः स्वाहा, उग्नाय नमः वसंकराय नमः स्वाहा, ओम वंशाय नमः स्वाहा, वंशनादानाय नमः स्वाहा, अविन्दाय नमः स्वाहा, अनिन्दिताय नमः स्वाहा, सर्वांगरूपाय नमः स्वाहा, मायाविने नमः स्वाहा, ओम सुहृदाय नमः स्वाहा, अनिलाय नमः स्वाहा, अनलघाय नमः स्वाहा, बन्धनाय नमः स्वाहा, बन्धकर्ते नमः स्वाहा, सुबन्धमीजाय नमः स्वाहा, सहसारगे नमः स्वाहा, सहज्ञानरथे नमः स्वाहा, सकारमानाय नमः स्वाहा, महाद्रष्टाय नमः स्वाहा, मायायुधाय नमः स्वाहा, बहुधानन्त्याय नमः स्वाहा, ओम सर्वाय नमः स्वाहा, ओम शंकराय नमः स्वाहा, ओम अगनाय नमः स्वाहा, ओम अमरेशाय नमः स्वाहा, ओम महादेवाय नमः स्वाहा, ओम विश्वदेवाय नमः स्वाहा, ओम सुराग्रिणे नमः स्वाहा, अहिर्भूद्याय नमः स्वाहा, अनिलाभाय नमः स्वाहा, शेखितानाय नमः स्वाहा, हविषे नमः, ओम अजय पातके नमः स्वाहा, अजय कपाते नमः स्वाहा, ओम कापिले नमः स्वाहा, त्रिशंके नमः स्वाहा, अजिताय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम धनंतरे नमः स्वाहा, ओम धूमकेतवे नमः स्वाहा, ओम इसन्दगाय नमः स्वाहा, वैष्णवाय नमः स्वाहा, ओम धात्रे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम मित्राय नमः स्वाहा, ओम तोष्ट्रे नमः स्वाहा, ओम ग्रीवाय नमः स्वाहा, ओम धराय नमः स्वाहा, ओम प्रभवाय नमः स्वाहा, ओम सर्वाय वाय नमः स्वाहा, सर्वगाय वायवे नमः स्वाहा, अर्थमे नमः स्वाहा, सवित्रे नमः स्वाहा, ओम रवये नमः स्वाहा, ओम संगे नमः स्वाहा, विधात्रे नमः स्वाहा, ओम मान्धात्रे नमः स्वाहा, भूतभावनाय नमः स्वाहा, ओम विभवे नमः स्वाहा, ओम बणविवायिने नमः स्वाहा, ओम सर्वकामगुणाय नमः स्वाहा, सर्वकामगुणवहाय नमः स्वाहा, पद्मनाभाय नमः स्वाहा, महागर्वाय नमः स्वाहा, चन्द्रवस्त्राय नमः स्वाहा, अनिलाय नमः स्वाहा, अनलाय नमः स्वाहा, बलवते नमः स्वाहा, उपशान्ताय नमः स्वाहा, पुराणाय नमः स्वाहा, पुण्यसञ्चने नमः स्वाहा, ओम ए नाम स्वाहा, कुरुकर्त्रे नमः स्वाहा, ओम कुरुवासिने नमः स्वाहा, कुरुभूताय नमः स्वाहा, ओम गुणदोषाय नमः स्वाहा, ओम सर्वासाय नमः स्वाहा, धर्मचारिणे नमः स्वाहा, सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः स्वाहा, ओम देवादेवाय नमः, सुमुखशक्ताय नमः स्वाहा ओम सते नमः स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम सर्वरत्न वेद नमः स्वाहा ओम कैलास गिरी वासिने नमः स्वाहा हिमविद्नि संस्थाय नमः स्वाहा हिमबद्धि सहस्रसाय नमः स्वाहा ओम कुलहारिणे नमः स्वाहा ओम कुलकत्रे नमः स्वाहा ओम भवविद्याय नमः स्वाहा ओम बड़ुभृदाय नमः स्वाहा ओम वाणिजाय नमः स्वाहा ओम वरदकिने नमः स्वाहा ओम वृक्ष

0: वाणिजाय नमः स्वाहा वकीलाय नमः स्वाहा बहुप्रदाय नमः स्वाहा बहुविद्याय नमः स्वाहा सिद्धार्थकारिणे स्वाहा सिंहनादनाय नमः स्वाहा सिंहधर्मराष्ट्राय नमः स्वाहा सिंहगाय नमः स्वाहा सिंहवाहनाय नमः स्वाहा प्रभात्मने नमः स्वाहा जगत्कालस्थनाय नमः स्वाहा लोकहिताय नमः स्वाहा अमतरवे नमः स्वाहा सारंजाय नमः स्वाहा नवसक्रांगाय नमः स्वाहा अमकेतुमालिने नमः स्वाहा सवानाय नमः स्वाहा भूतालयाय नमः स्वाहा भूतपतये नमः स्वाहा अहोरात्राय नमः स्वाहा अग्निदिताय नमः स्वाहा सर्वभूतानां बाह्यत्रये नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अभिभवे नमः स्वाहा भवनाय नमः स्वाहा अमोघाय नमः स्वाहा संगताय नमः स्वाहा अश्वाय नमः स्वाहा भोजनाय नमः स्वाहा प्राणधाराय नमः स्वाहा घृतमिदे नमः स्वाहा अमिताय नमः स्वाहा दक्षाय नमः स्वाहा सत्कृताय नमः स्वाहा युगधापिताय नमः स्वाहा गोपालाय नमः स्वाहा गोपतये नमः ओम ग्रामाय नमः स्वाहा गोमवर्चनाय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम हिरण्यवाय नमः स्वाहा प्रवेशिनाय नमः स्वाहा गुहालपालाय नमः स्वाहा प्रकिष्ठारे नमः स्वाहा महर्षाय नमः स्वाहा जितकामाय नमः स्वाहा जितेन्द्राय नमः स्वाहा ओम गंधधराय नमः स्वाहा उपसदाय नमः स्वाहा 720
1: लिफ्ट
0: या नो नो वी क्रॉस्ड तपस्सक्ताय नमः स्वाहा ओम रतये नमः स्वाहा ओम नराय नमः स्वाहा महागीताय नमः स्वाहा मायानित्याय नमः स्वाहा अप्सरो गण वेत्ये शिवाय नमः स्वाहा महाकेतवे नमः स्वाहा महाधातवे नमः स्वाहा नेनक्यसुनुचारे नमः स्वाहा नेकसानुचराय नमः स्वाहा ओम चलाय नमः स्वाहा ओम आवेदनीयाय नमः स्वाहा आदेशयाय नमः स्वाहा सगंध सुखावहाय नमः स्वाहा तोरणाय नमः स्वाहा ओम तारणाय नमः स्वाहा ओम बाताय नमः स्वाहा परिधने नमः स्वाहा परिखेचराय नमः स्वाहा संयोगार्थ वर्धनाय नमः स्वाहा संयोगाय वर्धनाय नमः स्वाहा ओम विद्याय नमः स्वाहा अतिविद्याय नमः स्वाहा ओम अतिविद्याय नमः स्वाहा ओम गुणाधिकाय नमः स्वाहा ओम नित्यामात्म सहाय नमः स्वाहा देवासुरपतये नमः स्वाहा ओम पतये नमः स्वाहा ओम युक्ताय नमः स्वाहा ओम युक्तभावे नमः स्वाहा देवी सुपर्णे नमः स्वाहा असड़ाय नमः स्वाहा उपसपसाय नमः स्वाहा ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा ओम हरिणाय नमः स्वाहा ओम हराय नमः स्वाहा आवर्तमाने भीवसे नमः स्वाहा ओम वसुश्रेष्ठाय नमः स्वाहा महापथाय नमः स्वाहा ओम शिरोमणि नमः स्वाहा सर्वलक्षणसिद्धाय नमः स्वाहा अक्षाय रथ योगिने नमः स्वाहा ओम सर्वयोगिने नमः स्वाहा महाबलाय नमः स्वाहा सामग्नाय नमः स्वाहा ओम अस्मायानाय नमः स्वाहा तीर्थदेवाय नमः स्वाहा महारथाय नमः स्वाहा निर्विजयाय नमः स्वाहा ओम जीवनाय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम मंचाय नमः स्वाहा ओम शुभाक्षाय नमः स्वाहा बहुकर्णनाय नमः स्वाहा ओम रत्नभूताय नमः रत्नंगाय नमः स्वाहा महाबनी पाणिदेयाय नमः स्वाहा महार्णबणी पानविदे नमः स्वाहा ओम मूलाय नमः स्वाहा ओम विशालाय नमः स्वाहा ओम अमृताय नमः स्वाहा ओम व्यक्त्याय नमः स्वाहा ओम तपोनिधे नमः स्वाहा ओम आरोहराय नमः स्वाहा आधिरोहाय नमः स्वाहा शीलधारिणे नमः स्वाहा ओम महायसने नमः स्वाहा ओम सेनाकल्पाय नमः स्वाहा ओम महाकल्पाय नमः स्वाहा ओम योगाय नमः स्वाहा ओम युगकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम युगरूपाय नमः स्वाहा ओम महारूपाय नमः ओम स्वाहा महानगनाय नमः स्वाहा ओम महानागनाहाय नमः स्वाहा ओम बधाय नमः ओम स्वाहा महानागगणाय नमः स्वाहा ओम न्याय निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम मातपदाय नमः स्वाहा ओम पादाय नमः स्वाहा ओम पंडिताय नमः स्वाहा ओम अचलोपदाय नमः स्वाहा बहुमालाय नमः स्वाहा महामालाय नमः स्वाहा शशिनी हरसुलोचनाय नमः स्वाहा ओम विस्ताराय लवणाय कृपाय नमः स्वाहा ओम त्रियुगाय नमः स्वाहा ओम सफलदयाय नमः स्वाहा अप्रतिलोचनाय नमः स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा मणिसिद्धाय नमः स्वाहा ओम जटाधराय नमः स्वाहा ओम बिंदवे नमः स्वाहा ओम विसर्गाय नमः स्वाहा सुमुखाय नमः स्वाहा ओम सराय नमः स्वाहा ओम सारूत

ाय नम स्वाह ओम सर्वायुधाय नम स्वाह ओम सहायाय नम स्वाहा निवेदनाय नम स्वाहा सुखा जाताय नम स्वाहा सुगंधाराय नम स्वाहा महाधनुषे नम स्वाहा गंधपालिने नम स्वाहा ओम शंकाय नम स्वाहा उत्थनाय नम स्वाहा उमंथनाय बाहुबलये नम स्वाहा मंधाननाय बहुल बावे नम स्वाहा ओम सकलाय नम स्वाहा सर्वलोचनाय नम स्वाहा तलस्थालाय नम स्वाहा करस्थालिने नमः स्वाहा ऊर्ध्वसमनाननाय नमः स्वाहा उमहते नमः स्वाहा उमछत्राय नमः स्वाहा सुछत्राय नमः स्वाहा वीरव्यातलकाय नमः स्वाहा सर्वाक्षताय क्रमाय नमः स्वाहा ओमुन्नाय नमः स्वाहा ओमविरूपाय नमः स्वाहा ओमविकृताय नमः स्वाहा ओमदण्डिने नमः स्वाहा ओमकुन्निने नमः स्वाहा विकृणवणाय नमः स्वाहा अरिहच्छाय नमः ओमकुम्भाय नमः स्वाहा ओम ककुभाय नमः स्वाहा ओम वज्रिणे नमः स्वाहा ओम शतविजाय नमः स्वाहा सहस्रपादे नमः स्वाहा सहस्र सुभद्रे नमः स्वाहा ओम देवेन्द्रराय सर्वदेव मापाय नमः स्वाहा ओम गुरवे नमः स्वाहा ओम सहस्रभावे नमः स्वाहा ओम सर्वांगाय नमः स्वाहा ओम शरण्याय नमः स्वाहा ओम सर्वलोककृते नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा त्रिककुळे मात्राय नमः स्वाहा कनिष्ठाय नमः स्वाहा कृष्णपिंगलाय नमः स्वाहा ब्रह्मदंड विनिर्माताय नमः स्वाहा शतग्नि वास शक्तिमे नमः स्वाहा पद्मगर्भाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा ब्रह्मगर्भाय नमः स्वाहा ओम जलोद्भवाय नमः स्वाहा गवस्ते नमः स्वाहा ब्रह्मकृते नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ब्रह्मवेदे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणाय नमः स्वाहा ओम गतये नमः स्वाहा अनंत रूपाय नमः स्वाहा ओम नैकात्मने नमः स्वाहा ओ स्वयंभू तिग्म तेजसे नमः स्वाहा ऊर्ध्वगामद्मे नमः स्वाहा उपस्पदये नमः स्वाहा बातहराय नमः स्वाहा मनोजवाय नमः स्वाहा चंदनीये नमः स्वाहा चंदनीने नमः स्वाहा पद्मनालग्राय नमः स्वाहा सुरम्य भूतरणाय नमः स्वाहा ओम नराय नमः स्वाहा कणिकार महास्रग्विणे नमः स्वाहा ओम नीलमौलये नमः स्वाहा ओ पिनाकधृते नमः स्वाहा उमापतये नमः स्वाहा उमाकांताय नमः स्वाहा जाह्वविभृते नमः स्वाहा उमाधवाय नमः स्वाहा ओम बाराय बाराय नमः स्वाहा ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम वरेण्याय नमः स्वाहा ओ सुमहास्वाय नमः स्वाहा महाप्रसादाय नमः स्वाहा दमनाय नमः स्वाहा शत्रुघ्ने नमः स्वाहा श्वेतपिंगलाय नमः स्वाहा प्रीतात्मने नमः स्वाहा परमात्मने नमः स्वाहा प्रयात्मने नमः स्वाहा प्रधानधृते नमः स्वाहा सर्वपार्श्वमुखाय नमः स्वाहा ओम त्रास्ख्याय नमः स्वाहा धर्मसाधारणे नमः ओम धर्मसाधारणोपराय जन्नमः स्वाहा चराचरात्मे नमः स्वाहा सूक्ष्मात्मने नमः स्वाहा अमृताय गोगविशेश्वराय नमः स्वाहा सारदस्याय नमः स्वाहा ओम वसुरादित्याय नमः स्वाहा विश्वदवस्ये नमः स्वाहा विश्वते सवितामृताय नमः स्वाहा ओम व्यासाय नमः स्वाहा ओम स्वर्गाय शृंगोपाय विस्ताराय नमः स्वाहा पर्यायोनराय नमः स्वाहा ओम ऋतये नमः स्वाहा ओम संवत्सराय नमः स्वाहा ओम मासाय नमः स्वाहा ओम पाक्ष्याय नमः स्वाहा ओ शंका समनाय नमः स्वाहा ओम कलाभ्यो नमः स्वाहा काष्ठाभ्यो नमः स्वाहा लवेभ्यो नमः स्वाहा मातृभ्यो नमः स्वाहा मुहूर्ताभ्य क्षेपाश्यो नमः स्वाहा ओ वर्णशिभ्यो नमः स्वाहा क्षणभ्यो नमः स्वाहा विषम क्षेत्राय नमः स्वाहा 920 ओम विश्व क्षेत्राय नमः स्वाहा प्रजा विजाय नमः स्वाहा ओम लिंगाय नमः स्वाहा ओम आद्याय निर्गमाय नमः स्वाहा ओम सते नमः स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम व्यक्ताय नमः स्वाहा ओम अव्यक्ताय नमः स्वाहा पित्रे नमः स्वाहा मात्रे नमः स्वाहा ओ पितामहाय नमः स्वाहा स्वर्गद्वाराय नमः स्वाहा प्रजाद्वाराय नमः स्वाहा मोक्षद्वाराय नमः स्वाहा त्रिविष्टापाय नमः स्वाहा निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम राधनाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मलोकाय नमः स्वाहा ओम पराय गते नमः स्वाहा ओम देवासुर विनिमात्रे नमः स्वाहा देवासुर परायणाय नमः स्वाहा ओम देवासुर गुरुवे नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा देवासुर नमस्कृताय नमः स्वाहा देवासुर महामात्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाक्षत्राय नमः
स्वाहा निवासुर गणाध्यक्षाय नमः स्वाहा निवासुर गणकृत्यै नमः स्वाहा देवी देवताय नमः स्वाहा देवादि देवताय नमः स्वाहा देवर्षये नमः स्वाहा देवासुर वरप्रदाय नमः स्वाहा देवासुरेश्वराय नमः स्वाहा ओमेश्वराय नमः स्वाहा ओमेश्वराय नमः स्वाहा देवासुर महेश्वराय नमः ओम सर्वदेवी मयाय नमः स्वाहा अंजिन्याय नमः स्वाहा देवतात्मने नमः स्वाहा आत्मसमवाय नमः स्वाहा उद्यमे नमः स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा ओमेधाय नमः स्वाहा विरजाय नमः स्वाहा नीरजाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा इडाय नमः स्वाहा ओमहस्तीश्वराय नमः स्वाहा बेग्राय नमः स्वाहा देवसीमाय नमः स्वाहा नरऋषभाय नमः स्वाहा विबुधाय नमः स्वाहा अग्नबराय नमः स्वाहा सूक्ष्माय नमः स्वाहा सर्वदेवाय नमः स्वाहा तपोमाय नमः स्वाहा ओम सुक्ताय नमः स्वाहा सुयुक्ताय नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा अभिवाय नमः स्वाहा जी ओम शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा ओम निसर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम गृहाय नमः स्वाहा अव्याय नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा ओम कांताय नमः ओम निजाय सर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंग प्रियाय नमः स्वाहा प्रभुजे नमः स्वाहा राजराजाय नमः स्वाहा निराजायाय नमः स्वाहा अभिराय नमः स्वाहा अभिरामाय नमः स्वाहा सुरगणाय नमः स्वाहा अभिरामाय नमः स्वाहा सर्वसाधनाय नमः स्वाहा ललाटाक्षराय नमः स्वाहा विश्वदेवाय नमः स्वाहा हरिणाय नमः स्वाहा ब्रह्मवर्चसामाय नमः स्वाहा स्थावरणाम नमः स्वाहा स्थानपतये नमः स्वाहा स्थावरणाम पतये नमः स्वाहा नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः स्वाहा सिद्धार्थाय नमः स्वाहा सिद्धभूतार्थाय नमः स्वाहा अंचित्याय नमः स्वाहा सत्यव्रताय नमः स्वाहा शुचये नमः स्वाहा व्रताधिपाय नमः स्वाहा ओम परस्परे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम भक्तानां पुरयाय गतवे नमः स्वाहा ओम विमुक्ताय नमः स्वाहा ओम मुक्ततेशसे नमः स्वाहा ओम श्रीमते नमः स्वाहा श्रीवर्धनाय नमः स्वाहा ओम जगतपतये नमः स्वाहा इति शिव सहस्त्र नामावले शिवार्पणम् स्वाहा हर हर महादेव शिव जी के 11 1008 names तो शिव जी को वो करके फिर करते हैं बचा है वेट वेट हां तो 11 टाइम्स वी एवरीवन चैंट ओम नमः शिवाय स्वाहा टुगेदर ओके ओ

स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो खड़ा होके पूर्णावती देंगे कंप्लीटली। नाउ एवरीवन स्टैंड अप एंड दिस इज द फाइनल सेक्रीफाइस एंड हवन। ये पूरा है, ये तो ये है नहीं यही ठीक है, इसी को धारण लगाता हूँ। हरि ही ओम। यहाँ पे बचा हुआ गिरा दीजिए। वट एवर लेफ्ट ओवर वी गोइंग टू ऑफर नाउ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसी, वसो पवित्रेण सहस्रधारेण देवस्त्वा पुनातु सविता वसो। ओम शांति शांति शांति। फिर ये हाथ में लगाइए। हरि ही ओम। दो हाथ में लगा के अग्नि में दिखा के। ओम बलमसि बलमहि देहि, मन्युमसि मन्युमहि देहि, सहोसि सहमहि देहि, तेजोसि तेजोमहि देहि, वीर्यमसि वीर्यमहि देहि, ओजोसि ओजोमहि देहि, मन्युमसि मन्युमहि देहि। ओम शांति शांति शांति। द फाइनल पीस प्रेयर। ओम देव शांति रंतरिक्ष गुं शांति हस्ते शांति रापा शांति रो सधाया शांति।

अलकपुरी जी महादेव की जय, देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की ओम।

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वद्धि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। श्री दीप नारायण भगवान की।

सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चिदुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दीपनारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की जय। मीन्स ग्लोरी, जय मीन्स विक्टोरी, सो एंड जय मीन्स लॉन्ग लाइफ। सो वी ऑलवेज सेड द ग्लोरी विक्टोरी ऑफ गुरुदेव, विक्टोरी ऑफ द राइट हाउसनेस, द धर्मा, सनातन धर्मा।

श्रीदीप नारायण भगवान देवादिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति।

0: नंद जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वा गुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: फर्दर अबाउट द प्रेयर्स टुमारो।
1: A dál o modlitbě, jestli budeme říkat
0: zítra. Om šanti, šanti, šanti.

दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर, ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना। अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा। कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठो तो। इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है, भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना, सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां सभी सज्जन आएंगे दर्शन करेंगे तो कार्यक्रम चलता रहेगा। अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, इफ यू वॉन्ट टू लिसन द भजन्स देन इट विल बी webcast and bhajans whenever you like, you can put on your television and you can see or hear the bhajan. Bol Sanatan Dharma Ki Jai, Sat Guru Dev Ki Jai.

है जिनको जाय पुकारी है, जहाँ देखूं जहाँ आप ही आप हो, नित्य चेतन निराकारी है।

0: नंद जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: फर्दर अबाउट द प्रेयर्स टुमारो।
1: A dál o modlitbě, jestli budeme říkat
0: zítra. Om šanti, šanti, šanti.